0: रेडियो एरी एफएम 98.6 हर्रे बाटा 102.7 वीरेंद्र नगर सुर्खेत बाटा।
1: बुलबुल बुलबुल बुलबुल एउटा ईरानी चरा बुलबुल कम्युनिकेशन को रात्रि प्रस्तुति। बुलबुल बुल